होनागाट रेजिमेंट चल चलो प्रेजेंट होनागाट सोल्जर सारी बे कंपनी

Angola Sukusa, Nepalese as was Nepalese as one of the good life biscuits, Juna Korashmila. Husibabe Dunga, Yoko Hikontas Modo, Sarkar and the Clan Hapasa, Igdua Niki, Tagano, Rat in Unisiano, Daria Tono, Topis of Hebeono, Ale Yoko Mofe Dunga, Lipabolo, so to Dine, Bis Paki Wogu, search and rescue team Yato, say. Permission bila ale we alipa athon ta kathyo bale aja suno news bo gudurga dhebli ana bulina ana hydro power surung ta duni wo surunge sai sui mafta jimsa sai mal mafta aajna tha ta bisay ma tai kotha sai online khabar wo samachar sai bigudula tho sai tas kahe bam lagu jula sare le ana surung duni kari parib cha sosi bi apamnu ta ana sai duni lana sungu dai go anuman du thake go ma mosu go ma sai pyaung ya gon thena wona mosu tara nyatsa तो खुशी बाले सरकार हो दो कुछ तो देख को गया भेज कर सही जाए भेज उनको मदद सारे भी ये कोई संख्या प्रभावित जुलो और ये तो इसको है दुर्गम थाना जुलो नुआ कोटी है बचा गाड़ी मौत है सही अनो जा जुलो और ये अनो हाइड्रोलिया ना मनोदली क्या फटा तर रसुआ यू खाले खोसा अनो पर्याप्त रूप में उदार या अनो मफे सुंगो रखा सही वो है सुंगो जुलो और ये आयु खाले खोसा सही आतो पहचान मजबूत पीने को जोन सी मधु वो साइन ये ना थोड़ा गाड़ी वो ये ना गाड़ी आया उसने तैयारी जो ऐसे होंगे जुला अलग मेरे है ना अपना है सब व्यवस्था पनी आगे दो साल अबे करीब करीब हजार जने थे नी ना मनुता मोरपी मतलब मनुते तो तेज ना चीके चीके दे सरकारी के वह सरकारी अस्पताल वाइ त्यहाँ नो पूर्वाधार तो मधु उल्लेखनीय तो उसको मैं थाकूँ ऐसा मज़ूला अलेह थोड़ी ले यो कोई को निवाद ला निवाद संस्था ने चुना ले रखा बिसाइन चुने दिया सा निवाद ये तो बोला विशेष ना सही वो खुशी बाग वोगु दी दस कते निशे प्रत्येक दी आठ बजे चुनी गया ना बीचों में दो अलग अनाजाई रसुआ नुआ कोट धादिंग विशेष ना प्रभावित जिला जिलो तो क्लियर फो प्रभावित सही नुआ कोट और रसुआ जिलों लाले रसुआ वो नुआ कोटिया अनाजी केंद्र समिति अलग जिला समिति नगर समिति बिजली वेकापिस वासाई अनाज थागो अपडेट सत्य हुए ना बीचों में दो यहाँ तक वो कुछ जानकारी को थोड़ा सा है नरेंद्र प्रधान वे कहते हैं केंद्र सदस्य विदुर नगर पालिका सुना दी बटारे अलग अनाज सा है वे कहते हैं मई थली कैंप पहुंचा मां 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस से खबर कही थी वे कहे था तक उली प्रभावित जुगम मधु वे कहते हैं सुलेली का लागू था जरा तर वे कल व्यादी को जानकारी अनुसार से अनाज निवादी तो व्या जिला या कुछ अध्यक्ष सरिता जोशी अलग जिला है जो गीता श्रेष्ठ पूर्णलाल डंगोल वे कॉपी से परिवार सहित सरिता जोशी या कसा मे भी गीता श्रेष्ठ पूर्णलाल डंगोल परिवार सहित आनो बेपता लान सुंगो दूर का से वे कलम करा दी गुजरो अलग अति है चुए रस्वे आनो ये कोई को निवाद तो है जाना चाहे थमा या फुपिंता राहत भी गुजरे अलग है जो सुंगो खाना वो गुजरा अलग ठुली जगह ना मगा आज ये समग्र निवाद तो बास समग्र सुनी का ले चुम पीसा ना सब सरोकार के निमाला दही को ठासे मिंगा सोमबा आई तो बाना सब सुनी को जा जुला अमाल के सुंदर जुया अवाने अलग थोड़ा आ थोड़ा ची कार्यक्रम जा चुम ले सारे तीन निश्चित शुरू जी थोड़ा ना सुजी खा गेजी खा बोला ये पास का सीधे तरह अकुन प्रारंभिक साल फल का था जाए आवे गु सनीबा आ तो घटना जो गु जमाजाई चिन सनु दाई अले चिन सनु वा चिन निनु बिदा लगा जाए तो सोक रैली है ना बस तो पुरानी सी शांति बाटी का तो गोसोक रैली है ना अली शांति बाटी का जाए मच्छा के गु लगा से प्रारंभिक साल फल जो गु जुला अली सुनो नमो या गु खाली ची सांसाई सरोकार की निगु श्रद्धांजलि दिस है गु जासो लगा से धागो जुला वो बाहेक ना मेमे गु जासो तो ना पक्का डू उन्हें सिपने लगे थे तर जासो साहक ना मेगु सपु मिस्वे

आउने स्टर्लिङ एकको खरिदर 205 रुपियाँ 30 पैसा, बिक्री दर 206 रुपियाँ 11 पैसा। स्विस फ्रान्क एकको खरिदर 187 रुपियाँ 23 पैसा, बिक्री दर 187 रुपियाँ 97 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर 108 रुपियाँ 32 पैसा, बिक्री दर 108 रुपियाँ 75 पैसा। कनेडियन डलर एकको खरिदर 109 रुपियाँ 32 पैसा, बिक्री दर 109 रुपियाँ 75 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर 119 रुपियाँ 9 पैसा, बिक्री दर 119 रुपियाँ 56 पैसा। जापानिज यन 10 को खरिदर 9 रुपियाँ 47 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 51 पैसा। चाइनिज युआन एकको खरिदर 22 रुपियाँ 56 पैसा, बिक्री दर 22 रुपियाँ 64 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर 40 रुपियाँ 39 पैसा, बिक्री दर 40 रुपियाँ 55 पैसा। कटारी रियाल एकको खरिदर 41 रुपियाँ 60 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 76 पैसा। थाई भाट एकको खरिदर 4 रुपियाँ 56 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 58 पैसा। युएई दिरहाम एकको खरिदर 41 रुपियाँ 29 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 45 पैसा। मलेसियन रिङ्गित एकको खरिदर 37 रुपियाँ 54 पैसा, बिक्री दर 37 रुपियाँ 69 पैसा। साउथ कोरियन वान 100 को खरिदर 11 रुपियाँ 4 पैसा, बिक्री दर 11 रुपियाँ 8 पैसा। स्विडिस क्रोनर एकको खरिदर 15 रुपियाँ 81 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 87 पैसा। डेनिस क्रोनर एकको खरिदर 23 रुपियाँ 52 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 61 पैसा। हङकङ डलर एकको खरिदर 19 रुपियाँ 34 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 41 पैसा। कुवैती डिनार एकको खरिदर 493 रुपियाँ 67 पैसा, बिक्री दर 495 रुपियाँ 62 पैसा। बारेन डिनार एकको खरिदर 402 रुपियाँ 17 पैसा, बिक्री दर 403 रुपियाँ 77 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल एकको खरिदर 393 रुपियाँ 84 पैसा, बिक्री दर 395 रुपियाँ 40 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब हामी गीत सुन्छौँ अपूर्व तामाङको भावना।